0: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
1: भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 16 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
2: भूमिका। अपार प्रेम

0: जा रहे हो।
1: देह तुम नहीं हो, परंतु इस भ्रम में हो कि मैं देह हूं। देह न होते हुए भी तुम्हारा स्वयं को देह मानना ही धृतराष्ट्र की दृष्टि है, यही अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर किए बिना ज्ञान तुम में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ चिंतन करना चाहिए। जीव रहे देह में और हृदय में देव, दोनों मिल खेलते और परस्पर छोड़े, है एक इन पुतलियों को नचाने वाला। भली बुरी हैं पुतलियां एक ही में दोनों।
2: కనుక జీవుడుండు దేహమందు హృదయమందు దేవుడుండు ఈ రెండు కూడా ఒక చోటనే ఉంటున్నాయి. కనుక ఈ దేహాన్ని నీవు ఆధారంగా చేసుకుని నువ్వు వారిని అనుభవిస్తున్నావే, కానీ దేహమే ఆధారం లేకపోతే వాళ్ళు సర్వాత్మక భావంతో ఉంటారు. కనుక దేహ ప్రాంతిని దూరం చేసి జీవ బ్రహ్మ ఐక్యానుసంధానములో నిత్యానందమును అనుభవించమన్నాడు, బ్రహ్మానందములో చేరమన్నాడు, ఆనందాన్ని అర్థం చేసుకోమన్నాడు.
1: అతః దేహమే జీవ హే और हृदय में ईश्वर, इस प्रकार दोनों एक ही जगह हैं। इस देह को आधार बनाकर तुम उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव प्राप्त कर रहे हो। यदि यह देह ही नहीं होती तो वह सर्वात्म भावना में ही रहती। अतः देह संबंधी भ्रम को दूर कर जीव ब्रह्मैक्य अनुसंधान में नित्यानंद को प्राप्त करो। उन्होंने ब्रह्मानंद में विलीन हो अद्वैतानंद को समझने को कहा।
2: ఈ విధంగా బోధించి కట్టగడపటికీ అతనికి ఒక విధమైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞ దృష్టిని అందించాడు. స్థితప్రజ్ఞంలో ఉండేటువంటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏకాత్మ భావమే. ఇంద్రియాలకు ఏమాత్రం కూడా వశం కాక సమాధి చిత్తుడై సుఖ దుఃఖములను మానాభిమానములను నిందాస్తితులను ఒక్కటిగా భావించుకునేటువంటిది, ఇవి అన్నీ కూడా భగవత్ విభూతులుగా విశ్వసించేటువంటిది అట్టివాడే నిజమైన స్థితప్రజ్ఞుడు. ఇటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడై నా ఆజ్ఞను నీవు తిరసావహించమన్నాడు.
1: ఇస్ ప్రకార ఉపదేశ దేకర్ శ్రీకృష్ణ నే అర్జున్ కో స్థిత ప్రజ్ఞ దృష్టి ప్రదాన్ కీ. स्थित प्रज्ञ में निहित प्रधान लक्षण एकात्म भावना ही है। इंद्रियों के वशीभूत न होते हुए समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सुख और दुख, मान और सम्मान तथा निंदा और प्रशंसा को समान मानने वाली दृष्टि ही स्थित प्रज्ञ की है। इन सभी को ईश्वरीय विभूति मानने वाली ही है। ऐसा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। उपसंहार। भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखला के इस अंतिम प्रवचन में भगवान बाबा ने विशेषतः श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया कि भक्त का प्रथम कर्तव्य ईश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना ही है। हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए कि यह आदेश श्रीकृष्ण के संदर्भ में मात्र अर्जुन के लिए ही है, लेकिन स्वामी के संदर्भ में हम सबके लिए भी है। स्वामी ने देह, कर्म, हृदय की विशुद्धता के माध्यम से जिस निष्काम कर्म की ओर संकेत किया है, वह निस्संदेह हम सब के लिए निर्धारित सेवा का मार्ग ही है। अतः हमें स्वयं को इन गीता प्रवचनों के श्रवण तक ही सीमित न रखते हुए इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ जीवन में अपनाने का, निष्काम भावना के साथ प्रयास करना चाहिए, जो प्रत्येक भक्त के जीवन का अंतिम उत्स है। स्वामी से सविनम्र प्रार्थना है कि वे हम सबको इस पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति और संयम प्रदान करें। अस्तु।
3: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 16 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।